0: उपरंत कुछ फैसले भी ले आ कि हल्का वार मतलब के सारे हल्कियां दे विच एक बंधक इकट्ठ जिहड़ा है ओ कीता जावे। ओ सारियां चीजां हैगियां ने। तां असल च की आ कि ए एक माहौल जिहड़ा है बड़ा भेड़ आला है। भेड़ आला किदां है कि एक पासे धार्मिक संस्थावां जिहड़ियां ने ओ अपनी ताकत ला के पूरी ताकत दे नाल इस मामले नूं जिहदी आपां गल कीती है पिछली खबर दे विच वी थोड़ी जी हल्की जी गल कीती आ कि भगवंत मान दी चूड़ी टाइट कीती रखी जावे इलेक्शन तक इस मामले नूं इस माहौल नूं गरमाया जावे।
1: जी
0: तां यानी जिहड़ियां पंथक संस्थावां ने एक्चुअल दे विच मोटिव इहो ही आ कोई मन्ने ना मन्ने। पर दूजे पासे जिहड़ा इन्हां दा मोटिव है इन्हां दा इस वेले मकसद है ओह वी कोई गुझा नहीं है। जिस तरह इन्हां ने स्पैशल इनवेस्टिगेशन टीम बना दिती आ जिहड़ी के अज बैबल जां बरगाड़ी बेअदबी कांड की जांच दोबारा कर रही है उहदे विच इह वी किते ना किते इस गल ते जोर अजमाइश कर रहे ने कि इलेक्शन तो पहला सुखबीर सिंह बादल नूं किसी किस्म का वड्डा झटका दिता जाए। झटका कोई भी हो सकता है, हो सकता है सुखबीर सिंह बादल की कोई गिरफ्तारी की खबर भी आ जाए। लिहाजा ये दोवें चीजा जिहड़ियां सरकार भी एक तरह नाल संस्था है ते दूजे पासे धार्मिक तौर ते जे SGPC जां श्री अकाल तख्त साहिब ये भी संस्थावां ने। तां इह संस्थावां दा भेड़ जिहा बन गया है ये मामला जिहड़ा है हुण आपो अपने पद्धर ते गरमाउण दा यतन कीता जा रहा उधरों भी ते उधरों भी।
1: अच्छा मोदी हुणी हुणी की वड्डा कुछ करन जा रहे है जी?
0: देखो बहुत वड्डा भी हो सकता है, वड्डा तां शब्द शायद छोटा रह जांदा जदों आपां कह दिंदे आ बहुत ही वड्डा हो सकता है। अज दी तरीक दे विच उन्हां ने जिस तरह पहला टीएमसी तोड़ी उस तो पहला आम आदमी पार्टी नूं तोड़िया उन्हां ने पंजाब तो ही इसकी शुरुआत हुई सीगी। इतो इलावा हुण जे तुसीं देखोगे तां उन्हां दी नजर जिहड़ी है उह इस वेले अखिलेश यादव दी पार्टी ते है। इतो इलावा जो NCP है उन्हां ते नजर है कि इन्हां नूं किते ना किते तोड़ दिता जावे। तोड़ क्यों दिता जावे इस गल नूं समझना बहुत अहम हो जांदा है। दर असल की है कि मानसून सैशन बिल्कुल नेड़े आ गया है ते इस वेले इन्हां दे कोल जो कुल आपां गिणती देखिए 540 वैसे मैंबर पार्लियामेंट ते लोकसभा दे विच ते किसे भी वड्डे चेंज नूं अंजाम देन वास्ते इन्हां दे कोल जिहड़ी गिणती है 2/3 दी ओह उस हिसाब नाल चाहीदी आ। तां गल आ कि 324 इन्हां दे कोल हो गए ने, इन्हां नूं 10-20 होर चाहीदे आ ते 10-20 जिहड़े आ ओह इह चाहुंदे आ कि एबस्टेन कर जाण यानी गैर हाजर हो जाण। जदों अंकड़ा जिस हिसाब नाल होएगा तां ओह अंकड़ा उन्ना घट जाएगा जिन्ना मान लो उस दिन हाजरी का अंकड़ा होगा उस हिसाब न ही 2/3 का आना है ना। तो यह हम कितने ना कितने कहानी जिहड़ी आ वह समझ पै रही है कि यह जो तमिलनाडु की एक पार्टी है DMK उन्होंने भी तोड़न का कितने ना कितने तहद्दद करते पे आ कितने ना कितने तहैया करते पे आ। कुल मिला के यही एक वड्डा होने का इमकान आ कि 2/3 इन्हों नूं चाहीदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਤੇ ਆਏਗੀ ਆਏਗੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਤੈਅ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਰਾਜ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੁਕਵਾਂ ਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ NCP ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ NCP ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 330 ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 330 ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਤਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ 528 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ 528 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ 2/3 ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾ ਲਈਏ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
4: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज

0: कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 403-903-6757।
1: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।
2: की तुहाडे परिवार विच किसे नू होम केयर दी जरूरत है? अपने ही घर अंदर अपनी बोली विच होम केयर प्राप्त करने लई YYC होम केयर वालियां दा अगला संदेश सुनो।
3: सत श्री अकाल जी, मेरा नाम वीरपाल कौर टाटा, मैं फाउंडर हां YYC होम केयर सर्विसेज दी एंड मैं पैरामेडिका बाय प्रोफेशन। एट YYC होम केयर सर्विसेज असी घरां दे विच होम केयर प्रोवाइड करदे आं, जिहदे विच असी सरकार नूं सिद्धा बिल करदे आं अंडर क्लाइंट डायरेक्टर होम केयर इनवाइसी प्रोग्राम। इहदे लई गवर्नमेंट फंडिंग हैगी आ। उहदे लई तुहानूं कोई भी क्वेश्चनस होण तुसीं सानूं फोन कर सकदे आं 8257600983 'ਤੇ। थैंक यू।
4: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दियां वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
0: अपने घर दा दूजा नाम आया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
2: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
0: वधिया घर खरीदना, पैसे बचाउणे ने, सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंगल।
2: सिर्फ घर खरीदण ले ही नहीं बल्कि वेचना भी होवे तां बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंगल।
0: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंगल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
2: भरोसेयोग रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
0: जेकर कर रहे हो घर खरीदण ते वेचण दी प्लानिंग, मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उहनां दी वेबसाइट mandeep.realtor।
2: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868।
4: वासियों, कि तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओइसे स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन। चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी, इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ। इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा निगा वेलकम, फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ भी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696। ओइसे स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।
5: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
0: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
0: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
0: दूजी लोकेशन 117-7771 एवेन्यू, तीजी

0: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
1: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757।
0: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।
2: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
3: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना दो दिन।
3: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्भो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
4: ਲੈ ਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡਮ, ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ।
5: ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ?
6: ਉਹ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।